0: you should have made sure that only 8 of us or 9 of us were still there on the boat. Baki dube to dube.
1: भाई साहब, लॉजिक हम सबको लगता है कि हमारा ही सही है, है ना?
0: हमारा ही सही है।
1: बात हो रही है लहंगे की। हाँ बिल्कुल। तो अगला जो हम यहाँ पर चलाने वाले हैं वो है वी इंडस का बॉलीवुड का डांडिया, तो उसके बारे में भी सुन लें और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम अपने लहंगे तैयार करके रखें, क्योंकि डांडिया में लहंगा नहीं है तो उफ बहुत पड़ेगा महंगा।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
3: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Suat! Join Kariyan ka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: बड़े ही टंटे आए हैं जिंदगी में जब से वर्क फ्रॉम होम का टंटा शुरू हुआ है. जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रेणुका एंड अंतारा एंड ऑफ कोर्स इट्स मस्ती मैडनेस ऑन मस्ती 24/7.
0: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फंकीएस्ट.
2: आओ जी आओ, आपके फ्राइडे मॉर्निंग को ऐसा तड़का हम लगाने को तैयार है कि आप जानते तो हो क्योंकि सुनते तो
1: और यहीं पर आपको मिलती हैं वो सारी खबरें जो कि आपको करती हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि एक एक खबर जाके आप डिस्कशन कर सकते हैं बाद में. एंड हम आपको शर्त लगा के कहते हैं कि कोई भी खबर आप बिल्कुल सर्च करके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये सारी खबरें बिल्कुल 100% सच्ची हैं. सो 23 एम्प्लॉय
2: घटना पे आधारित.
1: तो अब ऐसा है अंतरा कि एक बॉस ने हाल ही में ये बोला कि भाई तुम घर से काम करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन एक ही सिर्फ काम करना है तुमको. देर आर मैंडेटरी लैपटॉप कैमरास जो कि मॉनिटर करेंगे आपकी स्ट्रिक्ट प्रोडक्टिविटी रिमोटली जब आप काम करेंगे. ऑलराइट, तो आपके लैपटॉप का जो कैमरा है वो हमेशा ऑन रहेगा और वो आपकी प्रोडक्टिविटी और की स्ट्रोक ट्रैकिंग, कितने की बोर्ड पे आप स्ट्रोक मारते हैं, एवरीथिंग. सो देर इज एक्टिव एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन. पहले ही हफ्ते में 23 एम्प्लॉयज रिजाइंड, क्योंकि क्योंकि तो मुझे बताने की जरूरत.
2: I would have also.
1: Exactly. तो उसने कहा ये क्या बात है, क्योंकि जो बॉस है उसने ये कहा कि देखो भैया मैं तो कह रहा था बड़े सारे लोग छोड़ के जाएंगे जैसे ये पॉलिसी आएगी, क्योंकि दे आर लेजी पीपल एंड दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी बट दे डू नॉट वांट टू शो प्रोडक्टिविटी. तो क्या
2: डज नॉट गिव यू द राइट टू पुट अ सीसीटीवी ऑन अस, हु आर यू.
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि तुम ऐसे किसी के घर के अंदर तो नहीं घुस सकते हो भाई साहब, है ना. बाकी ठीक है, टाइम शीट भरवा लो. सबसे ज्यादा परेशानी है तो टाइम शीट भरवा लो, ज्यादा ज्यादा बोलो क्या किया तुमने एक एक मिनट, थोड़ी मेहनत तुम भी करो. सिर्फ टीवी तो नहीं देख सकते ना बैठ के पूरे दिन ऑफिस में.
2: हाँ हाँ, और जैसे मेरी स्कूल की प्रिंसिपल जो है ना वो बड़ी कूल सी थी, तो शी ऑलवेज यूज टू टेल अस, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर्स है जिनको एकदम रूल को बेंड एकदम नहीं करना है, वो हमेशा उनसे कहते थे समथिंग्स यू हैव टू लेट गो, चूज योर बैटल्स. हर चीज में स्ट्रिक्ट होने का जरूरत नहीं है, कभी कभी जाने भी देना चाहिए.
1: या और अगर इतनी परेशानी है तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी कैंसिल कर दो, बोलो सब सिर्फ ऑफिस में काम करेंगे. बट दिस इज नो, नॉट एट ऑल. सिर्फ 23 ने छोड़ा, मैं हैरान हूँ कंपनी नहीं बंद हुई.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: क्या हो गया है बॉसेस को? मतलब सब बॉसेस को ऐसे मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं कि बॉसेस भी समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है.
2: आई एम हर कोजॉक टुडे एंड दिस इज मस्ती मैडनेस.
0: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द सब
2: आरजे रेणुका एंड आरजे अंतरा ऑन द ओनली बॉलीवुड मीडिया प्लेटफॉर्म अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया. दिस इज मस्ती 24/7. And this is not AI. हाँ जी, बताओ क्या हो गया? क्यों बॉसेस के पीछे पड़ी हो सुबह सुबह तुम? हाँ,
1: कहानी आपने शुरू की है तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है कि मैं अपनी ये वाली खबर यहाँ पे सबको सुनाऊं. भाई ये जो बंदा है ये इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, ठीक है. अब ये क्योंकि इसका इंटरव्यू 2 बजे से होना था तो ये 30 मिनट पहले पहुंच गया. होता ही है कि आप थोड़ा सा यू नो पहले पहुंच जाओ एंड एवरीथिंग. बट प्रॉब्लम ये हुई, जो सीईओ है वो आया अराउंड 3:10 पर. एंड जब जैसे उसने कहा लेट्स गेट स्टार्टेड, ये बंदा चला गया. ही जस्ट लेफ्ट एंड देन ही सेंट एन ईमेल, रीजन फॉर माय रिजेक्शन ऑफ योर इंटरव्यू.
2: क्या?
1: Dear CEO, I arrived 30 minutes early for a 2 p.m. interview. You showed up at 3:10 p.m. No apology, no explanation, just a casual let's get started. So I left the interview as soon as it started. I felt I was being taken for granted. If this is how my time is treated before I join the company, I can only imagine what happens after I join. So I rejected you and your कंपनी.
2: इसको उससे मिलवा दे जिसने नौकरी छोड़ी थी बिग फोर की और 6 महीने से ढूंढ रहा है.
3: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल.
2: हम मैच मेकिंग का काम शुरू कर देते हैं ऑन मस्ती 24/7. जी हाँ भाई साहब, आपने ऐसा स्टेप लिया है, आपको हम उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया था. लेकिन उसके बाद
1: और क्वेश्चन कर रहे हैं और डियर मस्ती को लेटर्स लिख रहे हैं.
2: और फिर उन सबको उन 23 एम्प्लॉइज से मिलवाते हैं जिन्होंने कैमरे की वजह से छोड़ी थी नौकरी.

0: All music is loud. Some songs just sneak in.
1: What
0: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7. Saturday night ka plan? Party, concert, ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Okay, Antra, the next khabar that I'm going to tell you, okay, is kind of, okay, it's a serious thing to talk about, but I don't want to be serious this morning. So, isliye main chahti hu ki usi pe mere kuch vicharon ko main prakat karu aur tumhare vichar bhi main suno. Baat karne wale hain hum Mukti Bhavan ki, jo ki Varanasi mein hai. Good morning.
0: Setting the perfect hot temperature for Friday. मस्ती मैडनेस
1: जी, बिल्कुल मस्ती मैडनेस पर आपका स्वागत है. अंतरा, तुमने सुना है मुक्ति भवन के बारे में वाराणसी के?
2: जी जी जी, बिल्कुल सुना हुआ है. Okay. बताए क्या क्या मुक्त, किससे मुक्त करने वाले हैं?
1: जी बिल्कुल, तो बताना चाह रही हूँ आपको कि काशी लव मुक्ति भवन जो है, इट्स अ चैरिटेबल हॉस्पिस जो कि लोकेटेड है वाराणसी में. और वहां पर क्या होता है कि एल्डरली या बिल्कुल टर्मिनली इल जो लोग होते हैं वो अपने लास्ट फाइनल डेज मोक्ष के लिए वहीं पर स्पेंड करते हैं. सो इसको डेथ होटल भी कहा जाता है. फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, बिकॉज रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन वेंट देयर एंड शी वाज टेलिंग मी अबाउट इट, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि नहीं, वहां पर लोग मरने के लिए आते हैं. मतलब बेसिक मरना इन द सेंस कि आप मोक्ष प्राप्त करते हैं वाराणसी के वहां पर, राइट? सो विच इज अ ब्यूटिफुल थॉट इन हिंदू रिलीजन एंड माइथोलॉजी. बट आगे की बात ये है भाई साहब कि अगर आप उन 15 दिनों में नहीं निकले, मतलब कि आपको वहां पर 15 दिन अलाउड होता है रहने के लिए, ठीक है? और अगर आप उन 15 दिन में मोक्ष आपने प्राप्त नहीं किया तो आपको छोड़ना पड़ता है उस जगह को. ओके
2: अच्छा
1: जी, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 रुपए का नॉमिनल चार्ज है वहां पर अकोमोडेशन का, ठीक है ना? और अगर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं ऊपर से, व्हाटएवर. बट इट्स नॉट अ समथिंग कि जहां पर आप आके अच्छा भी चलो सस्ता रहन सहन मिल रहा है तो 15 दिन यहाँ निकाल आते हैं टाइप्स नहीं है. आपको 15 दिन में मरना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप नहीं मर रहे हो तो आपको निकाल दिया जाएगा वहां से फिर. मतलब दिस इज नॉट, सो आप बिल्कुल एंड में आ सकते हो वहां पर. ओके,
2: व्हेन यू नो दैट यू नो कि एकदम मतलब श्योर, बेसिकली श्योरिटी लेके जानी है.
1: हाँ, तो कमरा, क्लैरिटी. आपको कमरा मिलता ही तब है जब डॉक्टर कहता है कि 15 दिन से नहीं चल सकता इंसान. तो हाँ, मैं सोच रही थी कभी एयरबीएनबी में किसी और के लिए बुकिंग करा. सच अ बैड थॉट, है ना? Such a evil thought I just got. But anyway, किसी ने देखा है क्या ये? देखा है तो तुम वापस आ गए.
2: I have no, seriously.

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: They are fresh. They are hot.

0: दांतों में दर्द, बड़ा ही पेनफुल दर्द होता है दांतों का दर्द।
1: यार पता है मेरे को बड़ा गंदा लगता है डेंटिस्ट पे जाना। आई हेट इट, मुंह खोल के बैठे और वो अंदर घुसा घुसा के कुछ ना कुछ, आई जस्ट डोंट लाइक इट।
2: Dainik Friday mornings, the funkiest and the funniest.
1: It's definitely one of the most irritating things to do, just getting your teeth cleaned or whatever. On Radio Masti 24/7, this is Renuka and Antara on Masti Madness. Sorry, hasri hai. Zaroor, main isko bolne nahi dungi. Abhi kuch bolegi, pakka kuch aisa bolegi.
0: नहीं, वैसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जब डेंटिस्ट के एग्जामिनेशन हो रहा तो वो डेंटिस्ट उन्हीं को बनना चाहिए, या तो दे स्मेल अमेजिंग और दे लुक अमेजिंग। बिकॉज जब तुम्हारा चेहरा और तुम मुझे इतने ही करीब आ रहे हो तो माइट एज वेल हैव समवन गुड टू लुक
1: एट। सही बात है, क्राइटेरिया होना चाहिए।
0: ऑकवर्ड पोजीशन, वो भी मुंह खोल के।
1: लेट्स नॉट गो देयर। क्या हुआ तुम्हारी न्यूज का, क्या हुआ ये बताओ तो।
0: न्यूज कुछ ऐसे हुई कि एक प्रिजनर था, ठीक है, स्वीडन की बात है। उसको ना दांत में दर्द शुरू हुआ। उस चार दिन से बोले जा रहा है कि भाई मेरे दांत में दर्द है, मेरे को दिखा दो। तो इन्होंने माना नहीं कि ठीक है, हो जाएगा, ठीक होता है ना, यू समटाइम्स ट्रीट प्रिजनर्स लाइक दैट, क्या ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो दवाई ले ले, पेन किलर ले ले। तो ये भाग गया प्रिजन से। जी हाँ, गया डेंटिस्ट के पास, बिकॉज ही कुडंट स्टैंड द पेन। गया, उसने अपना दांत निकलवाया एंड देन वो खुद ही वापस आ गया जेल, खुद वापस आ गया,
1: ऐसे जैसे घर से गया था टाइप्स।
0: करेक्ट, पहले तो वहां से भागा, भाग के अपना ट्रीटमेंट कराया, फिर खुद ही वापस आ गया वॉलंटरली।
1: एक्चुअली व्हाट अ सिंसियर गाय, राइट? कितना मेरे को खुशी हो रही है कि दुनिया में आज भी ऐसी इंसानियत बाकी है। मतलब ये डाकू भाग भी तो सकता था, ये क्रिमिनल जेल से भाग भी तो सकता था।
0: ये स्वीडन में हो सकता है।
1: सही बात है।
0: मे बी
1: दैट्स बिकॉज़ द स्वीडिश जेल्स आर सो कंफर्टेबल, वो कहते छोड़ना यार नहीं चलता।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: और हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर हम हैं आपके साथ सुबह 7 बजे से, और आपको सुना रहे हैं दुनिया भर की इधर उधर की ऐसी बातें विच आर टोटली अमेजिंग।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: और ये ऐसी बातें हैं कि आपको लगेगा कि ये शो कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। 3 घंटे बहुत कम होते हैं।
0: उफ, सही कहा बहन, तुमने सही कहा। अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाली हूँ उसके लिए हमको जाना पड़ेगा जापान, ठीक है? और जापान की एक बड़ी बहुत ही मतलब हिंदुस्तानी कल्चर से मिलती जुलती बात, ठीक है, जो कि मैं बताना चाहूंगी। वेल मे बी नॉट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट, बट डेफिनेटली जब तुम और हम है साथ में तो बात निकाल ही लेंगे हम। सो अब क्या है जापान में, क्या होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या हाई इमोशंस हो जाते हैं कपल्स के बीच में, ठीक है, कि तू और मैं लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं या जो भी है, तो वो चीखते विकते नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करते, दे डोंट ट्राई टू प्रूव अ पॉइंट बिकॉज दे फॉलो अ सर्टन कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है मैं बताती हूँ। जब उनकी लड़ाई होती है या ऐसा कोई मौका हो जाता है जबकि बिल्कुल हाई इमोशंस हो जाते हैं और वो एक दूसरे का खून करने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं ओके लेट्स टेक 3 मिनट्स ऑफ मा, MA, ओके
2: ओके,
0: कोई फोन और स्क्रीन नहीं, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं टू रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर, कोई बात नहीं, कोई विस्परिंग नहीं, जस्ट शेयर्ड साइलेंस एंड ब्रीदिंग जब तक कि हार्ट रेट और फिजिकल स्ट्रेस सेटल हो जाए। इसको कहते हैं 3 मिनट्स ऑफ मा, MA। अब बात रही कि भाई सिमिलैरिटी क्या है और अंतरा क्योंकि हंस रही है भैया हम भी लेते हैं 3 मिनट्स ऑफ मा जिसकी वजह से हो रहे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हम कहते हैं आ तेरी माँ
2: I was like it was right here कि भाई हमारे तो जैसे ही आपने बोला मैंने कहा कि माँ के बाद बाद वाला गाय
0: भाई 9 बजने के इस बार बिल्कुल हमें आपके साथ
2: इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है मिलॉर्ड
0: बाकी का हम माइक ऑफ करके डिस्कशन करेंगे, बट दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 प्रणाम

0: What, Chumka?
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: Good morning once again and welcome back. Radio Musty 24/7. Kya chal raha hai antra show ka naam kya hai?
3: शुक्रा में मस्ती मैडनेस। हमें पिछली बार में पूछना चाहिए था कि सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हम ही कर रहे हैं कि बाकी भी सुनने वाले भी कर चुके हैं पिछली वाले खबर में।
2: मैसेजेस देख के लगता है काफी ध्यान से सुन रहे हैं सब। कह रहे हैं हमारा नाम मत लेना पर हम माँ बाप सबको याद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया,
3: बिल्कुल करना है। वी मस्ट रिमेम्बर देम विद देयर रिलेशनशिप विद अस। सो वेल, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी खबरें इज लाइक, अभी पहले एक प्रिजनर था जो करा के अपना वापस आ गया जेल में खुद ही वॉलंटरीली। अब ये चोर है जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। डिफरेंस देखिए यहाँ पे, चोरों को कितनी इज्जत दी जाती है मस्ती मैटर्स पे। तो भाई ये बंदा घुसा किसी के घर में चोरी करने के लिए,
2: ठीक है,
3: एंड ही एंडेड अप स्मैश फिश बोल, मतलब वो गोल वाला होता है ना जिसमें एक गोल्ड फिश तैर रही होती है।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: तो वो उससे टूट गया।
2: ओके।
3: अब उसने कहा कि ये तो मेरे प्लान में था नहीं, बट उसका दिल जो था ना रेणुका, बहुत बहुत अच्छा था, भले ही वो चोर था।
2: ओके।
3: उसने वो फिश उठाई।
2: हाँ हाँ।
3: वो जो सिंक होता है ना, सिंक को प्लग करके उसमें पानी भर के वो मछली को उसमें जिंदा छोड़ के गया। चोरी सब करके लेके गया बट मछली की उसने जान बचाई।
2: मैं बता रही हूँ, मेरा दिल ले गया ये सीरियसली। कितना अच्छा आदमी निकला ये। हाँ,
3: बहुत अच्छा आदमी, बहुत। भले उसने चोरी की बट आप दिल देखे उसका, दिल।
2: बिल्कुल सही बात है। तो अगली बार आप चोर की चोरी ना देखें, आप दिल देखें उसका, दिल
3: दिल देखें।
4: आया
2: क्या गाना है, कल रात जी लेते छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, वापस आके बात करेंगे शार्क्स की। ठीक है अंतरा, क्या तुम तैयार हो? आज जानवरों की बात ही नहीं करी हमने।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: वॉच सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: हमारी रक्षक है वो जिनकी शेर सवारी है।
1: ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर, रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 25th सितंबर एट द सिनेमास नियर यू। दिस नवरात्रि सीजन स्किप द ट्रेडमिल, because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus present Bollywood Dandiya Night, where the colorful festive vibes meet Bollywood come music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
4: Suat.
1: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call
5: 9022-1210.
1: Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.

0: भाई साहब, आप किसी से भी पंगा लें, लेकिन अगर आप एक एक्वेरियम के अंदर रह रहे हैं तो शार्क से पंगा ना ही ले तो अच्छा है। यही हमारी तरफ से आपके लिए क्या है, एडवाइस है।
1: Setting the perfect hot temperature.
0: पानी में रह के मगरमच्छ से तो मैंने सुना है, लेकिन शार्क से नहीं सुना। तूने सुना है क्या ये?
2: जनरली भी शार्क से पंगा नहीं ही लेना चाहिए। मतलब ये हमें सिखाया गया है। उनके दांत नहीं देखे, बाप रे बाप।
0: लेकिन इंसान
2: जॉज मूवी याद आ जाती है मेरे को तो।
0: आई नो, लेकिन इंसान की बात नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ कि फीमेल शार्क से मेल शार्क भी पंगा नहीं ले सकता। पूछ कैसे?
2: जनरली भी नहीं लेना चाहिए, बाय द वे, इन ऑल स्पीशीज।
0: इसके अंदर की आत्मा, औरत की आत्मा जाग जाती है। मैंने फीमेल क्या बोला? मैं चाहे शार्क फीमेल है चाहे इंसान फीमेल है, मैं झंडा लेके खड़ी ही खड़ी हूँ। सो भाई, एक 8 साल की फीमेल सैंड टाइगर शार्क, उसने एक 5 साल का वही हाउंड शार्क को खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि उन दोनों को सोल के एक्वेरियम में रखा गया था। अब रखा तो गया है भाई, अब वो छोटा वाला मेल जो है बेचारा, उससे 3 साल छोटा है, उसको नहीं आती स्विमिंग अच्छे से। वो बार बार जब घूम के आता था एक्वेरियम में, वो उसके साथ उसकी टक्कर हो जाती थी। ठीक है, अब टक्कर हो जाती थी तो वो फीमेल चिढ़ गई। उसने कहा मैं इसको खा जाऊंगी, और 21 घंटे लगा के उसने उसको कंप्लीटली स्वॉलो कर लिया। सिर्फ उसकी पूंछ का जो टिप है वो उसके मुंह से बाहर निकलती हुई रहेगी, बाकी सारा अंदर गया वो। मतलब टेरिटोरियल वॉर कहते हैं इसको। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में अंतरा?
2: भाई टक्कर अब टैंक के अंदर हो या रोड पे हो, टक्कर मार के आप जा नहीं सकते।
0: एक्चुअली मुझे कई बार लगता है कि वो जो लड़के चीप वाले हमको सड़क वाले छेड़ना टाइप्स जो होते थे
2: या।
0: एक जमाने में जब हम जवाब नहीं दे पाते थे, अगर हम खा पाते उनको
2: तो खा ही जाते ना।
0: शार्क ने
2: मतलब दैट वुड एनी नॉर्मल शार्क और एनी नॉर्मल ह्यूमन शुड डू।
0: एक्जेक्टली, करना भी चाहिए ना। और इस शार्क ने थोड़े दिनों के बाद में जो ऑर्गन उसके नहीं हो पाए डाइजेस्ट, उसने वो थूक दिए साइड पे टैंक में। आई विश वी हैड दोस पावर्स। या खा जाते हम ऐसे लोगों को। हाँ,
2: अग्री अग्री, टोटली अग्री। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फीमेल शार्क।
0: गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक? इफ यू अग्री कि हमारे में ऐसे पावर्स होने चाहिए तो राइट टू अस 9151896 3।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: भाई एक बात तो है अंतरा, हाल ही में जो हमने बैकस्टेज सिब्लिंग्स के साथ में मस्ती एवीआई पर बात करी थी ना, मजा आ गया यार, मजा आ गया। दे सो ग्राउंडेड, दे सो मतलब कितने अच्छे लोग होते हैं ना ये जेन जी के आर्टिस्ट, दे हैव नो एयर्स अबाउट देमसेल्व्स।
0: Setting the perfect hot temperature for
2: मैं तो उनसे आते ही पूछा, ये जो सबको लग रहा है तुम दोनों में इतनी बनती है, इतने सिंग में हो, पहले मेरे को पहले तो सच्चाई बताओ क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, आठवा नौवा अजूबा जो है, हाउ आर यू मेकिंग इट पॉसिबल। बट देन वी रियलाइज दैट दे बोथ आर लाइक एनी अदर सिबलिंग्स एज वेल, बट दे आर सो गुड। लाइक इम्प्रोम्प्टू भी उस टाइम पे उन्होंने मस्ती एवीआई पे क्या मस्त जैम किया, नॉट ओनली द भजन जैमिंग बट ऑल्सो मतलब उन्होंने सूफी गाना भी अचानक से किया। हमारे एक लिसनर ने पूछा तो दे जस्ट सैंग इट ऑन द स्पॉट, इट वाज सो अमेजिंग। एंड दैट इज व्हाट द थिंग इज दैट वंस यू आर देयर बैकस्टेज सिबलिंग्स, जो कि होने वाला है 26th of September, इट्स जस्ट राइट हियर, अगर आपने टिकट ले ली है यू आर गोइंग टू हैव द मोस्ट ऑसम टाइम ऑफ योर
1: लाइफ। बिल्कुल, और अगर टिकट नहीं ली है तो वेल हमारे साथ जीत ली है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं जीती है तो भी ले लो टिकट इस समय पे। बिल्कुल, फैमिली डिस्काउंट तो इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, आई हैव टू टेल यू दैट। एंड यू नो
2: दैट इज ट्रू,
1: या द ग्रेट थिंग इज दैट ये जो शो है बैकस्टेज सिबलिंग्स का, इट इज लाइक आप स्पिरिचुअल एक दुनिया में चले जाते हैं फॉर 2 hours, राइट? आप अपने फोन रखते हैं साइड पे, आप सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करते हैं, साथ में गाते हैं। अब आप उसको भजन मानिए या आप उसको एक तरह की, जैसे कहते हैं ना, जस्ट बीइंग लॉस्ट विद अ क्राउड,
2: लाइक दे सेड दैट यू विल बी जस्ट इन द मोमेंट, उस मोमेंट को आप जियोगे।
1: बिल्कुल, जो कि जिए हुए पता नहीं हम कितना टाइम हो गया है, दैट वी हैव नॉट लिव्ड इन द मोमेंट, राइट? वी आर ऑलवेज गॉट दिस फोन इन आवर हैंड, सम डिवाइस और समथिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड। तो स्विच ऑफ कीजिए, बिल्कुल जाइए, फोन स्विच ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ, अपना माइंड स्विच ऑफ की बात कर रही हूँ, विच इज लाइक रियली अनहर्ड ऑफ इन टूडेज वर्ल्ड। बट गो फॉर इट, बैकस्टेज सिबलिंग्स विच इज ऑन 26th of September। अगर आप इस समय फ्राइडे को ही हमारा शो सुन रहे हैं लाइव, तो फिर डेफिनेटली टिकट्स जाके सिस्टिक से ले लीजिए एंड बी देयर, डू नॉट मिस इट, आई प्रॉमिस यू, यू विल नॉट रिग्रेट इट, नॉट रिग्रेट इट। गुड मॉर्निंग।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: And it's time for us to say bye bye. लेकिन अंतरा, इस वीकेंड तुम और मैं कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल, है कि नहीं?
2: Of course.
0: They make Friday mornings the summer.
2: करना ही चाहिए, क्या करे। मतलब सिंगापुर के सारे इवेंट्स इतने खास खास जो यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, पर तो सब जानना है।
1: हर जगह। और भाई क्या है कि हमारी मस्ती की टीम ऐसी ही रहती है, भाई इतने इवेंट्स होते हैं, इतनी अच्छे अच्छे शोज हो रहे हैं अभी से लेकर साल के एंड तक कि लगता है यार कुछ भी मिस नहीं हो सकता। सो वेल, जहां पर एक इंसान जाएगा बैक स्टेज सिबलिंग्स, विच इज एन अमेजिंग अमेजिंग इवनिंग एज वी जस्ट मेंशनड, वहीं पर दूसरा इंसान जाएगा इश्क सूफियाना। तो भाई आपको अगर इश्क सूफियाना की टिकट्स चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं राइट अवे, एंड वी विल ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट यू गेट द टिकट्स फॉर टुमारो। दिस इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग विद अमित धमेलिया जी। जी हाँ, जहां पर बॉलीवुड से लेके सूफी से लेके हर तरह के गाने होंगे, एंड ऑफ कोर्स येट अगेन इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट मिस, राइट अंतरा।
2: माहौल इज द मेन थिंग, लाइक जब आपका लाइव बैंड होता है, यू हैव रियली गुड सिंगर्स एंड एवरीबॉडी कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग दैट माहौल फॉर यू, एंड इट काइंड ऑफ इज अ स्ट्रेस रिलीवर एंड especially Saturday evenings go. It's like very very nice.
1: Absolutely. और हम तो कहेंगे पार्टी हॉपिंग करो, इवेंट हॉपिंग करो, इतने सारे इवेंट के दिन में कि एक जगह जाओ एक घंटा, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाओ, दोनों का लुत्फ उठाओ। जी हाँ, और अगर आपको हमसे पूछना है कि भाई हम कहाँ जाने वाले हैं तो हमें मैसेज लिखो राइट अवे।
2: गेस करो।
1: या फिलहाल के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ पर, और जहाँ भी आप जाएंगे हम वहाँ आपको जरूर आप हमें पाएंगे। क्यों भाई, सही है कि नहीं?
2: वाह वाह वाह वाह अंतरा, वाह वाह।
1: ऑलराइट, सो चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय एंड हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द फ्राइडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई विल सी ऑन मंडे एज ऑलवेज।
2: As always, जनता जानती है, जनता जानती है।
1: इसे कहते हैं प्रोवोकेशन, इसे कहते हैं कीड़ा, इसे कहते हैं तुनकबाजी। All right, see you guys. Have a fantastic day ahead. Bye, Antaro.
2: Bye-bye.

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
5: No talking allowed. Sirf music bolega. Back to back gaane only on Musti Music Cafe.
6: Radio Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
3: ऑल इज वेल।
2: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो नमस्कार आदाब। इनकलाबी शायर हबीब जालिब जब 1976 में 1976 में जेल में बंद थे तो वो फिल्मी गीत सुना करते थे। जेल में उनको जो रेडियो दिया गया था उसके ऊपर वो रेडियो सिलोन ही लगा लिया करते थे। उस अंधेरी दुनिया में उन्हीं गीतों ने उन्हें जिंदा रखा और तब उन्होंने अपनी राइटिंग के इनकलाबी अंदाज से एकदम अलहदा अलग हटकर एक नज्म लिखी किसी की आवाज पर। लिखा उन्होंने कि तेरी अगर आवाज न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति, तेरे सच्चे सुर हैं ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे, क्या क्या तूने गीत हैं गाए, सुर जब लागे मन झुक जाए, तुमको सुनकर जी उठते हैं हम जैसे दुख दर्द के मारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। एक इनकलाबी शायर को मोहब्बत में डुबो दे तो वो आवाज कैसी होगी अंदाजा लगाइए आप। अच्छा एक और बात बताइए, किसी आवाज की मोहब्बत में आप कितनी देर तक रह सकते हैं? घंटा, दो घंटा, दिन भर, महीनों? इस आवाज से आप कब तक प्यार कर सकते हैं? जरा सुनिए।

लेकिन किसी आवाज में आप बरसों और सदियों तक डूबे रह सकें और कभी ये ना कह सकें कि किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, वो आवाज लता दीदी की है। वो आवाज ही नहीं बल्कि आवाज की दुनिया की एक ऐसी घटना है जिनके होने से गायन सिर्फ मठ मंदिरों, हवेलियों और नाच घरों तक ही सीमित नहीं रहकर एक चाय वाले की गुमटी या बाल काटने वाले की दुकान में भी अपने पंख फैला सकता है। आज हम अपने शो में याद कर रहे हैं लता मंगेशकर जी को। लता जी उन शख्सियतों में से एक हैं जिनके बारे में ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि वो हमारा अतीत है, वर्तमान है या भविष्य। अगर हमारा देश एक शरीर है तो वो उसकी धड़कन और सांस है जो कभी पुरानी नहीं होती। जैसे हर आने वाली सांस अपने आप में नई और मुकम्मल है, वैसे ही लता जी की आवाज है। उन्हें हम आते जाते चलते फिरते दिन में एक बार तो कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं, कभी रेडियो पर या कभी कहीं और। आज उनकी यादें होंगी हमारे साथ। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर वक्त है आज के पहले म्यूजिकल ब्रेक का। आप इसमें आनंद लीजिए उनके गाए बेहतरीन उमदा गानों का और लौट कर आइए, ये यादों का सफर जारी रहेगा। लेजेंड सुन रहे हैं आप समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
0: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
2: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
0: वन एंशिएंट वार्निंग।
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
0: एंड देन देयर इज अ मैन हु क्रॉसेस द बाउंड्री।
4: हमें चिंता नहीं उनकी।
0: वॉच सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
4: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
0: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। एक कहानी, एक लड़की की कहानी जो अपनी अर्ली ट्वेंटीज में है और वो सुबह सुबह घर से निकलती है, रात तक जी तोड़ मेहनत करती है, काम करती है और रात को बिस्तर पर गिरते ही थक कर चूर होकर सो जाती है। उसको सपना आता है कि वो चलते चलते समंदर के किनारे एक काले पत्थरों से बने मंदिर में पहुंच जाती है। वो मूर्ति की तरफ ध्यान नहीं देती, मंदिर का पिछला दरवाजा खोलकर देखती है। बहुत सारे कदमों के निशान हैं, बहुत सारी सीढ़ियां बनी हैं। वो कदमों के निशान खो जाते हैं पानी में। वो सीढ़ियों पर बैठती है और समंदर की लहरें उसके पैरों को छूकर चली जाती हैं। ये सपना हर रात आता है। वो ये सपना अपनी मां को सुनाती है। मां अपनी बेटी का माथा चूमकर कहती है, भगवान का आशीर्वाद है, तुम खूब नाम कमाओ। और नाम सुरीले स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया, लता मंगेशकर। एक ऐसी चाशनी सी आवाज जिसकी मिठास में आप डूबे हुए हैं और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत सोख चुके हैं उस आवाज को, यानी संतृप्त हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। लता दीदी 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी। उनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, पर हाँ फिल्म संगीत के वो कुछ खिलाफ थे। बहरहाल लता दीदी की आवाज इतनी संजीदा थी, मगर बचपन में तो लता जी भी हर बच्चे की तरह से चंचल थी, शैतान थी। एक दफा हुआ ये कि एक बार एक दुकानदार ने उनके घर के नौकर को सिक्का नकली बताकर खोटा सिक्का है कहकर सामान देने से मना कर दिया। तब नन्ही लता जी ने वो पैसे नौकर से लिए और बड़ी चालाकी से उसी दुकान से उसी पैसे से सामान खरीद लाई। न जाने कैसे वो नकली सिक्का चलाया होगा उन्होंने, पर चला दिया। लेकिन उनके फादर इससे बहुत नाखुश हो गए। उन्होंने तब अपनी बेटी को जीवन की एक सीख दी, जिसे ताउम्र तक उन्होंने माना, निभाया। क्या थी वो सीख, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हैं समर के साथ, लता जी को कर रहे हैं आज हम याद, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: बचपन में लता दीदी बड़ी चालाकी से खोटा सिक्का चलाकर बाजार से सौदा ले आई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो से 24/7 लाइव पर। आपको अब बता रहा हूँ कि उनके पिताजी इससे बहुत नाखुश हुए और उन्होंने लता दीदी को बुलाया, उन्हें नया और खरा सिक्का दिया और कहा कि वो जाएं उसी दुकानदार के पास और उसको लौटा कर आए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगे। ये सीख, ये संस्कार लता दीदी के साथ हमेशा साथ रहे। ये बात अलग है कि पिता जब वो बहुत छोटी थी तभी साथ छोड़ गए। विनायक दामोदर, जो उनके पिता के दोस्त और नवयुग चित्रपट कंपनी के मालिक थे, उन्होंने परिवार को संभाला और लता को अपना करियर शुरू करने में मदद की। और ऐसे छोटी सी लता ने 1942 में एक मराठी फिल्म में अपना पहला गाना गाया। हालांकि आखिरी वक्त पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन सुनो कि साम्राज्ञी का सफर तो शुरू हो चुका था। अब बाकी था वो जो नियति ने उनके लिए तय कर रखा था। लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वो गाने से दूर भागती थी। जब उनको सिखाने की शुरुआत हुई तब वो गाना सीखने से बचने के लिए कई तरह के बहाने बनाती थी, कभी सिर दर्द तो कभी पेट दर्द का बहाना करती। और इसके बाद तो सब इतिहास ही है। शुरुआत संघर्ष से हुई, घर भर की जिम्मेदारी संभालने से हुई, मेहनत से हुई, लेकिन उसी ने लता को लता मंगेशकर बना दिया। सोना जितना तपा उतना निखरा। वो दिन भर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाती हैं। हालांकि उन दिनों बॉम्बे में ज्यादा स्टूडियो थे नहीं, तारदेव स्टूडियो में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। वो इतना हार्ड वर्क करती थी कि कभी कभी तो एक दिन में 6-7 गाने रिकॉर्ड करती। महल फिल्म का उनका गाया गाना आएगा आने वाला ने उनको फ्रंट फुट पर ला दिया। अब तक लोग सिर्फ शमशाद बेगम, नूरजहां, इवन उमा देवी को भी जानते थे। लता दीदी फ्रेश और ट्रेंड आवाज थी। लता दीदी की आवाज ऐसी बन गई है जैसे ये आवाज कोई स्पेसिमेन है बायोलॉजी लैब में रखा हुआ, जो सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रह सकता है बिना किसी बदलाव के। तो इसी आवाज की चाशनी में डूबे ये गाने आप तक आ रहे हैं और उसके बाद मैं इसी आवाज की कहानी लेकर लौट आऊंगा। लता मंगेशकर है आज की हमारी लेजेंड, जिनकी यादों में हम डूबे हुए हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से
1: 1942 में एक मराठी फिल्म में अपना पहला गाना गाया, हालांकि आखिरी वक्त पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको यह बता रहा था, वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लता जी को आज हम याद कर रहे हैं अपने शो लेजेंड्स में। इसके बाद फिर विनायक दामोदर साहब ने ही एक और मराठी फिल्म में छोटा सा काम दिलवा दिया, एक्टिंग। फिर लगभग एक साल बाद एक और मराठी फिल्म में पहला हिंदी गाना गाया, जिसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। कुछ समय बाद मास्टर विनायक की कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई बना तो वो मुंबई आ गई। यहाँ उस्ताद अमानत अली खान, अमानत खान देवास वाले पंडित तुलसीदास शर्मा से उन्होंने सीखा। पंडित तुलसीदास शर्मा बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे और उन्हें बड़े गुलाम अली खान साहब ने लता जी के बारे में कहा था कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती, और यही हमेशा सुर में रहने वाले सुर उन्होंने दिए फिल्म आपकी सेवा, बड़ी माँ और सुभद्रा आदि में। इसी दौरान उनकी मुलाकात वसंत देसाई साहब से हुई और ये उनके करियर का शुरुआती दौर था। विनायक जी का देहांत हो चुका था, विनायक दामोदर जो उनको अब तक उनके परिवार को और उनको पाल पोस रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे। इसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने विनायक के बाद लता को मेंटोर करने का जिम्मा उठाया। मास्टर गुलाम हैदर ने उनको सांस लेने की जगह बताई कि गाने में सांस कहाँ लेना है, जहाँ सम आता है वहां से गाने को उठाना होता है, ठीक वहीं सांस ले लो। लता दीदी कहती थी कि नौशाद साहब ने उनको उच्चारण सिखाया। उनका तरीका एकदम अलग था, वो गाने को कागज पर लिखवाते थे उनसे, फिर पढ़कर सुनाने को कहते। लता दीदी सुनाती और वो बता देते कि कहाँ क्या सुधारना है और बस फिर हो जाता। उनके शुरुआती दौर के म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास जी ने उन्हें सिखाया कि जब भी सांस लेनी हो माइक से मुंह फेर लो, सांस ऐसे लो कि किसी को मालूम न पड़े गाने में, वो सुनाई न दे, या लाइन खत्म हो वहां सांस ले लो। मगर धीरे धीरे लता दीदी ने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि किसी को पता नहीं पड़ता था कि उन्होंने कहां सांस ली, सुरों को खबर भी नहीं लगती थी सांस लेने की। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा सिंगर हो जाए या हस्ती हो जाए, सबसे बड़ी चीज होती है लर्निंग। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लता दीदी ने हमेशा ही किसी न किसी से सीखने की कोशिश की, या यूं कहूं कि हर किसी से सीखने की कोशिश की, और इस तरह सीखने सिखाने का ग्राफ भी बढ़ता रहा। लता दीदी की सफलता का ये ग्राफ भी बढ़ता रहा उनके सीखने के साथ साथ। इस ग्राफ की करेंगे बात, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Healthy khao, protein khao.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao.
2: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
3: GG.
2: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
5: It's a Masti Partner event.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। आज हम हमारे शो में याद कर रहे हैं लता मंगेशकर जी को। हाँ जी, लता दीदी, जिनके पास लगता है सुरों का कोई ऐसा खजाना है जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। अगर लगता है कहीं संगीत आराधना है तो वो उसकी देवी हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वही म्यूजेस हैं, रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से वही मिनर्वा हैं, और इंडिया में वही संगीत की सरस्वती हैं, थीं और रहेंगी, और हमारे लिए लता दीदी। और आप सोचे, फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी ने फिल्म शहीद के लिए लता दीदी की आवाज रिजेक्ट कर दी थी और कहा था कि आवाज बहुत पतली है इसकी। तब उस वक्त गुलाम हैदर साहब खफा हो गए थे और उन्होंने कहा था कि भविष्य में लोग लता के पैरों में गिरकर भीख मांगेंगे अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए, और ये सच साबित हुआ। इसके बाद गुलाम हैदर ने ही उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक दिया फिल्म मजबूर में, और गाना था दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा। और फिर इसके बाद तो उन्होंने सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए, न सिर्फ हिंदी मराठी में बल्कि सभी हिंदुस्तानी भाषाओं में गाने गाकर उन्होंने कीर्तिमान बनाया है। 1974 में लंदन में उन्होंने अपना पहला कॉन्सर्ट किया और उन्हें वहां मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पर पेश किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोल्ड डिस्क उन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट्स को दी जाती है जिनकी रिकॉर्डिंग की सेल्स एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा होती है। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उन्हें एक खास सम्मान से नवाजा। उनके नाम अवार्ड्स की तो देखिए एक लंबी फेहरिस्त है, 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड, 2 महाराष्ट्र सरकार के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, स्क्रीन और फिल्म फेयर जी स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बॉलीवुड का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के, और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। ये तो जाने माने पुरस्कार है, और अगर सारे में शामिल करने बैठा तो एक शो में मैं शायद नाम भी ना ले पाऊं, इतने पुरस्कार उनके नाम पर है। लेकिन वो हमारे लिए एक जीता जागता पुरस्कार है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जिसने भी लता जी को सुना वो एक बार सुनकर रोक नहीं पाया होगा अपने आप को। उसने फिर से सुना होगा, बार बार सुना होगा, उनके दूसरे गाने खोजे होंगे। ये जादू है लता दी का। आज उन्हें हम याद कर रहे हैं, उन्हीं की बातें कर रहे हैं, और ये बेहतरीन गाने भी हम लाए हैं जो उनकी यादों में चार चांद लगा रहे हैं। इन्हें सुनिए, वापस आइए, समर के साथ रहिए। लेजेंड सुन रहे हैं आप रेडियो 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हाँ जी, वेलकम बैक। सुर कोकिला लता मंगेशकर के सुरों और आवाज से आज हम तर बतर हो रहे हैं, पूरी तरह से सराबोर। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि बहुत प्यार से मधुर बात करने वाली दीदी का गुस्सा भी कम नहीं है? और गुस्सा दिखाने का उनका एक ही तरीका था, वो उसके साथ काम करने से मना कर देती थी जिनसे वो गुस्सा हो जाती थी। उन्होंने ओपी नैयर साहब के साथ गाने नहीं गाए। उसके बाद से जब ओपी नैयर ने कहा कि मेरे गाने सिर्फ गीता दत्त गा सकती हैं, आशा भोसले, हालांकि लता जी एक बड़ी सिंगर हैं, बस लता दीदी ने सोच लिया कि अगर यही बात है तो फिर मैं क्यों गाऊं गाना उनके साथ। सही भी है भाई, एक आर्टिस्ट में अपनी आर्ट को लेकर ये बात होनी चाहिए कि कोई उसका अपमान क्यों करते। अच्छा यही नहीं, उनकी एसडी बर्मन साहब के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक उन्होंने गाना नहीं गाया। बात इतनी सी थी कि कोई गाना लता दीदी ने गाया, बर्मन साहब को लगा कि कैरेक्टर के हिसाब से ठीक नहीं है, दोबारा गाना होगा। लता दीदी को बुलवा भेजा तो वो बोली मैं फिर से कर दूंगी, फिर से रिकॉर्ड कर दिया। फिर भी बर्मन दा को जचा नहीं। फिर उन्होंने किसी के साथ लता दीदी को बुलवा भेजा। लता दीदी उन दोनों बहुत बिजी थी तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही फ्री हो जाती हूँ मैं आ जाऊंगी। अब बर्मन दा ने लता दीदी के साथ काम करने से मना कर दिया। लता दीदी ने भी कहा ठीक है, आप मुझसे गाना नहीं गवाना चाहते तो कोई बात नहीं। बस फिर पंचमदा की समझाइश पर बात बनी। पर इस सब में 8 साल बीत गए और जो 8 साल बाद लता दीदी ने गाना गाया वो था एक लाज रोके पैया एक मोह खींचे बैया मोरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, फिल्म बंदनी का। राज कपूर साहब के साथ भी लता दीदी का कुछ ऐसा इशू रहा। वहां रॉयल्टी को लेकर बात थी। राज कपूर साहब ने कह दिया था कि हम किसी को रॉयल्टी नहीं देते। लता दीदी ने कहा कि लेकिन मैं तो लेती हूँ, बाकी सब प्रोड्यूसर्स देते हैं, आप भी दीजिए। राज कपूर साहब बोले लेकिन मैं राज कपूर हूँ। तो लता दीदी भी अटक गई, बोली मैं भी लता मंगेशकर हूँ। बस वहीं पर दोनों के बीच दीवार खिंच गई। लेकिन इस दीवार को राज कपूर को ही गिराना पड़ा क्योंकि वो जानते थे लता दीदी बिन गुजारा संभव नहीं। सच में वो तो हमारा भी रूटीन है, कहीं ना कहीं आते जाते उनका गाना सुन ही लेते हैं हम। फिलहाल तो आप सुनिए यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लता जी को कर रहे हैं आज हम याद। मैं हूँ समर। कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कहें। या लता दीदी की आवाज में आपकी पसंद का कोई गाना हमें प्ले करना है तो बताइएगा, वहां लिखकर हम जरूर चलाएंगे।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: यह ख्याल भी अपने आप में अटपटा लगता है कि लता मंगेशकर कभी बच्ची भी थी। लता दीदी किसी व्यक्तित्व से बढ़कर सिर्फ एक दिव्य आवाज लगती है जो सदियों से आ रही है और जन्म मृत्यु की सीमा के पार सदियों तक जाएगी। लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नूरजहां से बहुत मुतासिर थी। जब वो गाने के लिए आई थी, जब इंडस्ट्री में कदम रख रही थी, तो नूरजहां जी को रिकॉर्ड बजा बजा कर बहुत ध्यान से सुनते थे। तो उन्होंने देखा कि उस समय फिल्मों में ज्यादातर लोग मोहब्बत कहते थे और थोड़ा जोर देकर कहते थे। नूरजहां जी इसी शब्द को बहुत हल्के से उठाती और मोहब्बत कहती थी, तो इसे उन्होंने भी मोहब्बत कहना शुरू किया और बाद में देखा कि ज्यादातर सिंगर फिर मोहब्बत ही गाने लगे। इसके अलावा लता दीदी मधुबाला जी को भी बहुत पसंद करती थी। उनके करियर के शुरुआती दौर में मधुबाला ने उनका साथ दिया। मधुबाला ही अकेली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने बाकायदा अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाना शुरू किया कि उनका प्लेबैक लता मंगेशकर ही दिया करेंगी। इस बात से सेटिस्फाई होकर ही वो फिल्में साइन करती थी। बाद में ये काम कुछ और लोगों ने भी शुरू किया। लता दीदी अक्सर कहा करती थी कि अगर मधुबाला ने ऐसा कुछ न किया होता तो उन्हें इतनी आसानी से उनके सारे गीत न मिले होते। ये भी सच है कि मोहब्बत को मोहब्बत से रहा होती है। वो खुद इतनी अच्छी थी, सब उनके साथ ठीक से रहे, लेकिन अपने हक के लिए उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी, चाहे प्रोड्यूसर से हो या फिल्म के डायरेक्टर से, अपने साथी गायक से हो या संगीतकार से, उन्होंने अपना स्टैंड लिया हमेशा। तो चलिए फिलहाल जो गाने स्टैंड बाय हैं इन्हें भी सुन लेते हैं। ये लता जी की आवाज से सजे गाने आप तक आ रहे हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए

करूं। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ,

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी
4: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पंपकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: योर पासपोर्ट टू द वर्ल्ड एवरी मंडे मॉर्निंग फ्रॉम ग्लोबल हेडलाइंस टू अ पिंच ऑफ बॉलीवुड स्पाइस।
7: द मॉर्निंग शो विद रेणुका, 7 AM मंडेज।
8: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
9: Check it out.

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: यूं तो लता दीदी एक ऐसा नाम है जिनसे हम में से कोई भी अनजान नहीं है। उनकी आवाज का मुरीद कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहा ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि लता दीदी ने मराठी फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन भी किया था? म्यूजिक डायरेक्टर थी वो, और एज म्यूजिशियन उनका नाम ओरिजिनल नहीं था, फिल्म में उनका नाम नकली रखा गया था। ये शायद लेट 60s की बात है जब मराठी फिल्मों के बड़े निर्माता निर्देशक भालजी पेंढारकर शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक कथा पर मोहित्यांची मंजुला नाम की एक फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी पसंद के संगीत निर्देशकों से संपर्क किया, मगर उस वक्त सभी कहीं ना कहीं बिजी थे, व्यस्त थे। भालजी पेंढारकर को जल्दी थी और वो इस फिल्म का प्रोडक्शन संगीत निर्देशकों के खाली होने तक रोक नहीं सकते थे। तो ऐसे में लता मंगेशकर जी ने यह सुझाव दिया कि अगर भालजी बाबा चाहें तो वो संगीत बनाने में सहयोग कर सकती हैं। डायरेक्टर साहब ने ये बात सिरे से इसलिए खारिज कर दी थी कि उस जमाने में उनका एज अ सिंगर बड़ा नाम हो चुका था और उन्हें डर था कि कहीं फिल्म के संगीत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो नाहक ही लता मंगेशकर का नाम खराब हो जाएगा। अब एक बार फिर से लता मंगेशकर ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि भालजी बाबा चाहें तो वो स्यूडो नाम से संगीत दे सकती हैं। ये बात उनको कुछ जमसी गई तो इस तरह से एक नाम तय हुआ, जटाशंकर। लेकिन ये नाम लता दीदी को जमा नहीं। फिर उन्होंने क्या रखा नाम, मैं बताता हूं आपको एक ब्रेक के बाद।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: Un pedon par kisi kali अनजानी शक्ति का पहरा था।
4: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
3: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
4: One ancient warning.
5: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
4: And then there is a man who crosses the boundary.
6: हमें चिंता नहीं उनकी।
4: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
6: हमारी रक्षक है वो। जिनकी शेर सवारी है।
4: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर कर रहा हूं आपका स्वागत। आज हम लता दी को याद कर रहे हैं लेजेंड्स में। लता दीदी ने मराठी फिल्मों में म्यूजिक देना चाहा, पर वहां अगर लता दीदी अपने नाम से वो करती सबको मालूम हो जाता, लिहाजा उनके लिए नाम चुना गया जटाशंकर। लेकिन लता दीदी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक मराठी पोएट रामदास स्वामी की कविता से निकालकर एक शब्द चुना, आनंद घन। इसका अर्थ उनको भा गया, आनंद के बादल। लता दीदी बेमिसाल हुनर, अतुलनीय, इनक्रेडिबल। अपने पूरे करियर में वो बहुत व्यस्त रही। एक के बाद एक उनका गाना शेड्यूल रहता था। कई दफा जब लता जी को कोई गाना गाना होता था और वो उस दिन अवेलेबल नहीं होती थी तो किसी और से गाने को गवा लेते थे, डमी ट्रैक बनवा लेते थे। फिल्म में गाना शूट हो जाता था, आर्टिस्ट लिप सिंक कर देता था, लता जी उन्हीं नोट्स पर वैसे ही गा लेती थी। लेकिन सच कहें तो कोई कितनी भी डमी कर ले, लता जी का कोई मुकाबला नहीं था। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी थी। उनका फोटोग्राफी की तरफ बड़ा ही रुझान था। वो एक दफा एक फिल्म की शूटिंग पर गई। वहां उन्होंने कैमरे से एक नदी किनारे खड़े शख्स का फोटो खींचा। उन्होंने फिल्म एडिटर को यह तस्वीर दिखाई, वो भी इसे देखकर बड़े खुश हुए। फिर यह हुआ कि लता दीदी ने खरीदा अपना पहला कैमरा, पूरे 1200 रुपए का कैमरा। लेकिन लता दीदी ने डिजिटल कैमरा आने के बाद फोटोज लेना बंद कर दिया था। उनके अनुसार ये कोई फोटोग्राफी नहीं थी। लता दीदी की और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, वक्त बहुत कम है। कितनी कर पाएंगे, कितनी रह जाएंगी हमें नहीं पता, लेकिन बातें होती रहेंगी क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, जितना सुनाया जाए कम है। मैं बस यूं गया और यूं आया। आज की आखिरी मुलाकात करते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात,

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Saturday night का प्लान? पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
4: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं लता दीदी की यादों से सजे इस बेहतरीन शो में, नाम है जिसका लेजेंड्स। लता दीदी को खाना पकाने का बड़ा शौक था। जब भी कोई अच्छी रेसिपी मिलती तो वो सीख लेती थी। क्रिकेट मैच देखने का बचपन से बड़ा शौक। वो जब छोटी थी और उनके बाबा जिंदा थे, उनकी थिएटर कंपनी की एक क्रिकेट टीम थी आर्टिस्ट्स की और वर्कर्स की, और मैच हुआ करते थे आपस में। तब तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही होता था। जब भी मैच होते लता दीदी के परिवार के लिए वो पिकनिक से कम नहीं होता था। तो उस दौरान उनके घर आते जाते रहते थे पूर्व क्रिकेटर विजय सैमुअल हजारे, यानी क्रिकेट जो था लता जी का बहुत फेवरेट गेम था, बहुत करीब था उनके, और वो घर पर ही रेडियो पर कमेंट्री सुन लिया करती थी, एंजॉय करती थी। लता दीदी जिनकी आवाज से चेहरे बनते हैं, ढेरों चेहरे, जो अपनी पहचान को किसी रंग रूप या नैन नक्शे से नहीं बल्कि सुर और रागिनी के आईने में देखने से आकार पाते हैं। बचपन में रेडियो या ग्रामोफोन पर सुनते हुए किसी प्रेम गीत या किसी डांस सॉन्ग में हमने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि इस बक्से के भीतर कुछ निराले ढंग से मधुवाला या वहीदा रहमान पियानो और सितार की धुन पर थिरक रही हैं, बल्कि हमने उन्हें ही नाम से जाना। लता गा रही हैं। लता हमेशा हमारे दिलों में गाती रहेंगी, दिल के सारे चैम्बर्स में रक्त के साथ बहती रहेंगी। 29 दिन तक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मौत से लड़ने के बाद 6 फरवरी 2022 को वो मनहूस दिन आया जब भारत का सुर अनंत में विलीन हो गया और बस ये कह उठा, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। यहीं कहीं है पर वो हमारे आसपास, किसी के मोबाइल पर बज उठेंगे कभी भी, किसी के ईयरफोन से धुन बनकर कानों से लेकर रग रग में समा जाएंगे। वो कहां जाएंगे? वो हमारे दिल में, हमारी धड़कन में, हमारी सांसों में है। वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। उनको हमारी ओर से शत शत नमन।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network, Singapore.
4: Check it out. Josh
5: Mehra. Let's stop the music, Rebo, sing it.
6: नाचने का मन है,
2: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट।

0: सत्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
1: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
0: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: जय

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

Don't da, don't da, da.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.
4: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
5: Radio Masti 24/7 live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: चैनल।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates और थोड़ा Bollywood का मजा भी. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh
3: mein raho. मेरे करण अर्जुन आएंगे.
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो सिंगापुर एंड अ वेरी हैप्पी फ्राइडे, फ्राइडे। वेलकम टू मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ आपके साथ आपके मुग्धा तिरुकिदान। दिस इज फ्राइडे का शो, ऑल योर्स। हैरत हैरत हैरत है, हैरत तो मुझे भी होती है जान के कितनी जल्दी हम मंडे से फ्राइडे पे आ जाते हैं ना। एक मिनट, आपके वीकेंड का प्लान किसने बनाया ये बताओ मुझे, आपने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, या फिर वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है अभी कुछ करते हैं यार वाला, उधर ही अटके हो। एनीवे चलो कोई बात नहीं, हर अच्छे शुक्रवार को ना आइटिनरी दी जाए इसकी कोई जरूरत नहीं होती। अरे नहीं होती है यार, कभी कभी ना बिना प्लान के निकलो और कोई नई जगह मिल जाती है, कभी कभी किसी अनजाने इंसान से बात शुरू हो जाती है, और शाम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है उसी दिन होती है, और कहानी भी सबसे इंटरेस्टिंग वही बन जाती है। एंड दैट्स व्हाई हमारी फ्राइडे की फिल्म है अनजाने।

आने ए। देखो भाई सुनना तो पर गाना पूरा पड़ेगा। अगर आप ना पहली बार फ्राइडे के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बता दूं, हर शुक्रवार जो है हम बॉलीवुड की एक फिल्म सेलेक्ट करते हैं, उसके दो गाने, उसकी फीलिंग्स, उनको लेकर के हम 3 घंटे बात करते हैं, एज एन एंकर उनको इस्तेमाल करते हैं कि वो आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ती है, एंड देन बातें सिंगापुर की इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स, सम बॉलीवुड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फन। तो आज के पहले आर में शुरुआत करेंगे विद दिस टाइटल ट्रैक ऑफ अनजाना अनजानी, द केयरफ्री एनर्जी जहां पे आपको हर चीज ना पहले से डिसाइड नहीं करनी होती है, उसके बाद जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा मैं आपको बताती जाऊंगी, पर फिलहाल के लिए दिस वन एंजॉय।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे शाम का प्लान बनाते वक्त एक बात तो पक्की है, आप घर से जिस भी मोड में निकलते हो जरूरी नहीं है कि वापस भी उसी मोड में आओ, है ना। कभी कभी किसी अनजाने से बात हो जाती है, कभी नई जगह पे इतना ज्यादा मजा आ जाता है कि यार पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और आज हमारे अनजाना अनजानी टाइटल ट्रैक का जो मूड है यही तो है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा केयर फ्री है और नए एक्सपीरियंसेस के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप अनजाने लोगों के बीच पहुंचेंगे जरूर, लेकिन कुछ ही देर में सब एक साथ एक सुर में गाएंगे और सब अपने से लगेंगे। जी, एक ही तार आपको जोड़ेगा और वो है म्यूजिक। ये एक्सपीरियंस जहाँ पे आप अमेजिंग वातावरण में पहुंच जाएंगे। बैक स्टेज सिबलिंग्स प्राची और राघव की जोड़ी है, वो आ रहे हैं भजन बैठक के साथ। यहाँ पे ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आर्टिस्ट हु इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, नहीं, ऑडियंस भी साथ में गाती है, क्लैप करती है, झूमती है, भजन, सूफी, नॉस्टैल्जी फ्लेवर्स, ओह माय गॉड, मतलब हर तरह के लोग जा सकते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग ऑन 26th ऑफ सितंबर शाम 6 बजे, एंगेज थिएटर 2 सनटेक, यानी बस कल ही तो, राइट। अगर दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो जरूर सुनिए, सिस्टिक पे ना ऑफर्स हैं आपके लिए। स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड टिकट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट एंड बाय 4 गेट 2 फ्री बंडल में अगर आप 6 टिकट्स लेते हैं तो, ये भी ऑफर है सिस्टिक पे। बस स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा, अनजाने लोग अगर बिना आई कार्ड के पहुंच गए तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यू नीड टू हैव अ वैलिड स्टूडेंट आईडी कार्ड और वो भी आपका खुद का, किसी और का नहीं तो आप जोक मार के कहेंगे अरे तुमने बताया नहीं था मुग्धा कि मुझे अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके जाना है। दैट्स व्हाई क्लैरिफाइंग यू, सम पीपल आर जस्ट वे स्मार्ट, बनने की कोशिश करते हैं।
2: तेरे नाम तो सदके मैं जावान, तेरे नाम तो सदके मैं जावान, तेरा नाम जपदी फिरा।
1: तो कर लीजिए तैयारी, कल बैकस्टेज सिबलिंग्स का परफॉर्मेंस एंजॉय करने के लिए। आई विल बी राइट बैक, स्टे कनेक्टेड।
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: girl.
1: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पहले चलो,
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेली है।
4: जोश में रहो।
5: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
6: It's a must-be partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ना सिंगापुर इमेजिन करो एक सीन जहाँ पे आप किसी बाजार में घूम रहे हो, एक स्टॉल पे पहुँचते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है और दूसरे पर कुछ टेस्टी मिलता है, तीसरे पर कोई ऐसी चीज जो लेने का प्लान नहीं था पर यार ये तो बहुत ही कमाल है और आप उसको ले लेते हो। उसके बिना घर जाना ही नहीं है, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे ये चाहिए, ऐसे वाला यार यही तो मजा है बिना किसी फिक्स प्लान के घूमने निकल जाने का। अनजाना मीट्स अनजानी द टाइटल ट्रैक यही तो बताता है, नए लोग नए एक्सपीरियंस और पता नहीं अगला मोमेंट क्या सरप्राइज देगा स्टेज पे आपको। That's an A, O, ऐसे वाला कुछ है ना। ये जो वीकेंड है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटिंग है और मैं कहाँ जाना है आपको बता देती हूँ। दिस इज हैपनिंग ऑन संडे 27 यानी कि बस दो दिन बाद। नारपानी माउंट बैटन CCIAEC प्रेजेंट्स फेस्टिव बाजार 2026 एट माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल में सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक। हेलो रे हेलो जल्दी करो। फैशन अपैरल होम डेकोर गिफ्ट हैंडीक्राफ्ट ओह माय गॉड व्हाट नॉट सब है वहाँ पे। और अगर आपको लगे कि आज इतने घूमने के बाद भूख, अरे खाली पेट नहीं रहोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके लिए स्नैक स्टॉल्स हैं, खाने पीने का स्टॉल है, बच्चों को लेके कौन जाएगा यार, हेलो कोई बहाना नहीं चलेगा। यू हैव देयर बाउंसी कैसल जॉय राइड्स तो बच्चों को भी लेके जा सकते हो। बोर हो जाएंगे यार पूरे दिन नहीं होगे। यू हैव योर Yes, वहाँ के जो रेजिडेंट्स है ना वहाँ का लाइव परफॉर्मेंस आप एंजॉय कर सकते हो। सो देयर इज सो मच टू एंजॉय, बहाने नहीं चलेंगे। और एक और अपडेट, स्टॉल्स ऑलरेडी बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ बिल्कुल तैयार है आपको वेलकम करने के लिए, सिर्फ आपकी कमी है। जल्दी जाइए, पहले पाइए, जो भी बिल रहे स्टॉल पे आप पहले जाएंगे पहले पालेंगे। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: Hangout karenge par thoda hatke. Ye hai masti hangout RJ Muddha ke saath.
4: ऑर्चर्ड रोड पे ना शॉपिंग करते करते अचानक से सिर्फ ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग गया और सोचने लग गए सब लोग क्या हो गया क्या हो गया। अब आप सोचेंगे कोई सेलिब्रिटी आ गया, ओ माय गॉड, पहले तो मन बैठ जाता है कुछ हो तो नहीं गया, अरे कोई शूटिंग वोटिंग चल रही है, सिंगापुर है कोई भी आ सकता है, बट नहीं नहीं बस ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पूरे टेंशन ना एक नया मेहमान ले गया, एक नन्हा सा बर्ड। पूरे सिंगापुर में ये जो जगह थी ना, इस नन्हे बर्ड को बहुत पसंद आई। पैरागॉन के बाहर एक छोटे से ग्रीन येलो बर्ड को देखा गया फुटपाथ पे, वो ऐसे भटक रहा था रैंडमली, वो अनजाना था जो अपनी अनजानी को ढूंढ रहा था। एंड देखते देखते रोड पे ना ऐसे बीच में पहुंच गया वो, और गाड़ियों के टायर्स के बीच इधर उधर उधर उधर भाग रहा था। एंड सीन वाज लाइक थोड़ा स्कैरी एंड लाइक क्या है, फिल्मी सा लग रहा था। एंड फिर वही हुआ ना, आज के अनजाना अनजानी मूड के साथ बिल्कुल फिट बैठने वाली बात। एक लेडी और उनकी फ्रेंड ने बर्ड को बचाने की कोशिश शुरू की, और फिर आसपास के अनजाने लोग धीरे धीरे वहां पे हेल्प करने आ गए। ड्राइवर्स ने गाड़ियां रोक दी, किसी ने अम्ब्रेला बढ़ाया, किसी ने रास्ता बना दिया, एंड सब ने मिलके बर्ड को ट्रैफिक से बहुत सेफली बाहर निकाला। बाद में उसे वेट के पास लेकर के गए, सैडली बर्ड बच नहीं पाया। यस, दैट वाज द वर्स्ट पार्ट, वो बर्ड नहीं बच पाया। लेकिन एक बात सोचिए आप, उनमें से कोई एक दूसरे को जानता तक नहीं था, फिर भी एक नन्ही सी जान के लिए, एक बर्ड के लिए वो सारे आगे आए, रुके और सबने मेहनत की। अब ठीक है वो नहीं बचा, दैट्स उसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते। और मुझे ना अनजाना अनजानी का वो टाइटल ट्रैक याद आ गया, और उसकी फीलिंग भी मुझे बहुत अपनी सी लगी। हर अनजाना इंसान जो है सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं होता है, कभी कभी वो किसी की कहानी का सबसे ब्यूटीफुल और मेमोरेबल पार्ट बन जाता है। अब हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि That little bird is no more alive. लेकिन हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में इस बात को लेकर के कि फ्राइडे की वाइब का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की मदद नहीं करनी है। अगर आप जोर शोर में कहीं जा रहे हैं तो और किसी को जरूरत है, कुछ भी हो कोई भी हो, रुक करके उसकी हेल्प करिए।
5: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. Hello! Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Aha! Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
3: जीजी
2: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस.
3: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, आज आपके लिए एक चैलेंज है। जी हाँ, शो के सेकंड आवर में आते के साथ ही आपको चैलेंज दे दिया, क्योंकि अगर इस चैलेंज को आपने सही सही क्वालिफाई कर लिया सो यू हैव अ चांस टू ग्रूव ऑन द डांस फ्लोर 10 अक्टूबर को। और ये मौका सबको नहीं मिलेगा। डांस फ्लोर पे अपना जलवा दिखाओ, गाना पहचानो, लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं है कॉन्टेस्ट। जो गाना पहचान के सही जवाब देंगे, आप टिकट्स के थ्रू इस कॉन्टेस्ट में जा सकते हो, इस जगह पे जा सकते हो, बिकॉज वी इंडस पीटीई लिमिटेड प्रेजेंट बॉलीवुड डांडिया नाइट शनिवार 10 अक्टूबर शाम 6 से शुरू हो जाएगी। एंड का मेन्यू बता रही, खालसा एसोसिएशन बिल्डिंग सिंगापुर में। बॉलीवुड है, डांडिया है, फुल ऑन धमाल है एंड टिकट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो अपनी गैंग के साथ प्लान बना रहे हो तो जल्दी बना लो, बिकॉज अडल्ट के लिए टिकट प्राइस है 30 सिंगापुर डॉलर्स, 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है 15 सिंगापुर डॉलर्स और 6 साल या उससे छोटे बच्चों के लिए फ्री है। फ्री हाँ जी, लेकिन इसके अलावा एक और मौका है जहां पे आप टिकट्स ले सकते हो। पहले उसके पहले आप सुन लो, टिकट मास्टर पे टिकट्स अवेलेबल हैं, ग्रुप डिस्काउंट्स भी। अगर आप जा रहे हैं 15-20-25-30 लोग भर करके, तो एक नंबर नोट करो 9022-1210। इस पे कॉल करोगे ना तो आपको ग्रुप डिस्काउंट के ऑफर्स भी पता लगेंगे। पर मस्ती हैंग आउट एम ही थोड़ी आपको जाने देगा। सो आई हैव समथिंग फॉर यू, मैं आपको बॉलीवुड डांडिया नाइट के टिकट्स दे सकती हूँ जीतने का मौका, लेकिन उसके लिए आपको पहचानना होगा ये गाना। सुनो ध्यान से।

Now you have three options, okay? Option number one, dholira. Oh my God, मैं गा क्यों रही हूँ? Option B, नगाड़े संग ढोल बाजे, अब सही गाना भी पहचानना होगा तो भी बेसुरी आवाज में गलत पहचान लोगे. And option C, चोगाड़ा थारा. ऑप्शन ए है ढोलीड़ा, ऑप्शन बी है नगाड़े संग ढोल, ऑप्शन सी है चुगाड़ा. सही जवाब भेजिए 9151893 पर और आप बन सकते हैं हमारे लकी टिकट विनर. गाना पहचानिए, टिकट जीतिए 10 अक्टूबर को बॉलीवुड डांडिया नाइट में. जलवा जलवा फैशन का है ये जलवा. भैया फैशन भी तो भर भर के आता है डांडिया नाइट में. हाय है ना, तो चलो चलो जल्दी से वार्डरोब तैयार करो, गाने बजाओ, सब सही से जवाब भेजो और तैयार हो जाओ 10 तारीख के. आ जाओ जलवे बिखेरो उसने यार के.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक ने हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available, book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अरे यार, ये तो वही बात हो गई ना कि घर से निकले थे दूध लेने के लिए, वापस आ गए थे ब्रेड लेकर, पर ये क्या बात हुई। हाय सिंगापुर, अनजाना अनजानी में अभी हम रणबीर और प्रियंका की मुलाकात, जो उनके जिंदगी का रास्ता बदलती है, उसकी पूरी है कहानी पिक्चर में। कैसे दोनों एक दूसरे के साथ पहले तो एक दूसरे की जिंदगी बचा लेते हैं मिल करके, फिर साथ साथ चलते हैं हर मोड़ पे, हर मौके पर एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं, रास्ते बदलते होते हैं पर वापस आ जाते हैं। ऐसा ही है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर, ट्रेलर आया ना इसका। एक अनजाना हादसा हीरो की पूरी पहचान ही बदल देता है। जुप, बताओ, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान इस फिल्म का ट्रेलर लेकर के आए एंड स्टोरी सुनोगे तो आप कहोगे भैया ये तो अलग ही लेवल का कंफ्यूजन हो रखा है, तभी तो मजेदार हो रहा है। आयुष्मान का कैरेक्टर है बिलाल का, एक पाकिस्तानी स्पाई है जिसे इंडिया भेजा जाता है, लेकिन यहाँ एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली जाती है और वो धुरंधर बन जाता है। नहीं नहीं, अरे बख्श तो भैया धुरंधर को, उसकी याददाश्त चली जाती है और वो इंडिया का एक सपोर्टर जो है वो बन जाता है, पाकिस्तानी स्पाई से इंडियन सपोर्टर। ओ माय गॉड, आप सोचो जिन्होंने मिशन पे उसको भेजा उनकी क्या हालत हो रही होगी। स्पाई भेजा था इंटेलिजेंस लेने के लिए, बंदा खुद ही अपनी इंटेलिजेंस भूल गया और अपना इंटेलिजेंस सबको बांट के आ रहा है। बताओ, ट्रेलर देख कर ना व्यूज इसको जो है व्यूवर्स एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं धुरंधर से, पर ये बिल्कुल अलग है, प्लीज उसे मत कंपेयर करो। मतलब ये कॉमेडी और इसमें आयुष्मान का टाइमिंग इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। हालांकि फिल्म रिलीज हो रही है 9th October 2026 को, ज्यादा दिन है नहीं, पर अमेजिंग है यार। मतलब कैसे खो जाती है लोगों की मेमोरी, मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाई। हमारी बॉलीवुड की मूवीज में मेमोरी खो जाना कितनी आसानी से हो जाता है, और मैं सोचती रहती हूँ कैसे गुम जाती है, कैसे।
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GGMart, your personal grocer.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जंगल में जाना मना है। हाँ तो नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहा वैसे भी। हम यार जंगल में जाते भी नहीं है। नहीं नहीं, अरे भाई जंगल में जाना मना है, बॉलीवुड के हीरो क्या बोलेंगे सुनने के बाद। अच्छा तो फिर वहीं चलते हैं, जो मना करोगे ना हमारे यहाँ वही होता है। तो जंगल में जाना मना है तो हम वही जाएंगे और फिर पूरी पिक्चर बन जाती है। हाय सिंगापुर, अनजाना जाने की बात अगर हम करें तो रणवीर और प्रियंका की जर्नी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न से होकर के गुजरती है। अक्सर जो मना किया जाता है ये वही करते हैं। पर बॉलीवुड की एक नई फिल्म है जो अनजाने रास्तों से होते हुए निकलती है हीरो को सीधा एक मिस्टीरियस जंगल पर लेकर के। उसको किसी ने मना नहीं किया था, वो खुद ही गया था जंगल में। क्यों गया था वो पता लगेगा पिक्चर देख के। बात हो रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म वन द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। आई एम श्योर ये वन है, वन जो कि हिंदी का तो वन है पर इंग्लिश में डबल वी और डबल ए के साथ वन हो गया है। अरे भाई साहब, अब कहानी एक शहर की है जहाँ पे एक लड़का है जो अपने एंसेस्ट्रल विलेज लौटता है और एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में चला जाता है जहाँ जाना मना है। और फिर सामना होता है किसी सुपरनैचुरल पावर से, जो कि होना ही चाहिए तभी तो लोग जाएंगे फिल्म देखने के लिए, जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बिना एक भी कट के, कैन यू बिलीव इट, बिना एक भी कट के ऑडियो विजुअल मॉडिफिकेशन को मतलब क्लियर कर दिया है। सेंसर बोर्ड ने कहा भैया क्या ही बना दिए हो, क्या है ये, इतना अच्छा नहीं देखना था हमें, चश्मा लग गया इतना अच्छा देख के, एक कटनी कहाँ लगाए, कैची नहीं मिल रही जगह हमको, ऐसी हालत हो गई। क्लियर क्लियर क्लियर सफा चट। फिल्म को 16 प्लस का सर्टिफिकेट मिला है। रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे 16 मिनट का है एंड देयर इज नो कट। सेंसर बोर्ड ने भी कह दिया भाई जैसी है वैसी ही जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, मान गए। लेकिन आप कैसे देखेंगे? अरे बंदोबस्त है पूरा। सिंगापुर में विजन डिस्क सिंगापुर लेकर आ रहे हैं 25 सितंबर इन योर नियरेस्ट सिनेमाज। आइलैंड वाइड रिलीज है भाई, तो आप विजन डिस्क सिंगापुर को थैंक यू बोलिएगा और इस मूवी को जाके थिएटर्स में देख के आएगा, बिकॉज

0: ये 100 में से एक होता है कि सेंसर बोर्ड ने ऐसे जुब जुब जुब साफ पिक्चर ऐसे कैसे निकाल दी सट करके। शुक्रवार रोमांस है, कॉमेडी है, मिस्ट्री है, पर फिलहाल एक गाना है, एंजॉय।
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं शक्तियाँ भी बसती हैं।
1: प्रवेश वर्जित है उसकी चौखट पर यही लिखा था।
2: One ancient warning।
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary।
4: हमें चिंता नहीं उनकी।
2: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest।
4: हमारी रक्षक है वो जिनकी शेर सवारी है।
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: भाई ऐसा है कि प्यार में दो लोग होते हैं तो लव स्टोरी हो जाती है, और तीन हो जाएं तो काहे की लव स्टोरी हो जाती है, मतलब तब वो वॉर हो जाता है, लव इन वॉर। तो जी आज की फिल्म अनजाना अनजानी में रणबीर और प्रियंका की अनएक्सपेक्टेड मुलाकात, उसके बाद उनकी फिल्म में एक और एंगल का आना, उसके बाद वहां पे जद्दोजहद और बिछड़ने का सिलसिला, फिर एक ट्रायंगल आता है। कौन है वो ट्रायंगल आप सोचिए, याद करिए जायद खान है। तो कुल मिला के ये फिल्म भी जो है ना रोमांस को अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। आपको बहुत बाद में रियलाइज होता है कि आपका सच्चा प्यार तो आप उधर पानी में छोड़ आए। अब फिलहाल यहाँ बात कर रही हूँ मैं भंसाली साहब की, उनकी फिल्म है लव इन वॉर, रणबीर कपूर आलिया भट्ट विकी कौशल की। पर फिलहाल नजर सिर्फ वही आ रहे हैं। विकी कौशल और आलिया और रणबीर की फिल्म का फर्स्ट पोस्टर आया है जिसमें रणबीर दिख रहे हैं, एंड व्हाट अ लुक। कौन सी एनिमल, काय की एनिमल, देखा है आपने रणबीर को उसमें? लहूलुहान हाथ, अमेजिंग कार, तो कार ही देखती रह गई। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि लव इन वॉर आईमैक्स में भी रिलीज होने वाली है। तो भंसाली जी की फिल्म पद्मावत है ना, उसके 9 साल बाद इस फॉर्मेट में वो कुछ लेकर आ रहे हैं। रिलीज हो रही है ये फिल्म अभी बहुत दूर है भैया, 2027 जनवरी में रिलीज होगी ये फिल्म। फर्स्ट लुक पोस्टर, एक स्टाइलिश ब्लू विंटेज कन्वर्टेबल रणबीर चला रहे हैं फिलहाल, तो बैठे हैं, सनग्लासेस, मुस्टैश, और उनका हाथ खूनी खून है, खूनी खून, खून खून। मतलब टाइटल में लव है लेकिन पोस्टर में तो बस वॉर दिख रहा है। I'm just so excited to watch this one. वैसे मंजाली की फिल्म में कॉस्ट्यूम, सेट, विजुअल्स बहुत ही ग्रैंड होते हैं सच में, और आईमैक्स में तो स्क्रीन पर एक झुमका भी आ जाए तो पूरी ऑडियंस हाय झुमका ऐसे कर लेगी, है ना? अरे पर वो तो करण जौहर की थी। मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया। अब देखना है कि रणबीर आलिया और विकी की कहानी जो है वो इस पूरी स्टोरी में कितनी आग लगाएगी, कितना पानी डालेगी और कितना

0: में एनर्जी, लव, रोमांस सब भर भर के रखिए, क्योंकि रात रूमानी हो रही है मेरे दोस्त। शो में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे वाइब सो क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि दो दिन की छुट्टी होती है। अच्छा एक चीज बताओ, आपके घर में भी कोई ऐसा स्नैक है जो गेस्ट के लिए खरीदा तो जाता जरूर है लेकिन गेस्ट के आने से पहले रफू चक्कर हो जाता है, उसके दो पाँव निकल आते हैं और वो कहाँ चला जाता है किसी को भी नहीं पता होता। मॉम्स की पास्किंग कहाँ क्या मुझे नहीं पता, ये जब आप सबका होता है राइट है ना। इसे आज ना अनजाना अनजानी के साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की हम बात कर रहे हैं। द फिल्म वाज दिस एंड नाउ हम हैरत में हैं कि ये हो क्या रहा है। आपके लिए एक ऐसा ऑफर है जिसको सुन के आप भी हैरत हैरत हैरत में आ जाएंगे। दिस इज जीजी मार्ट की मिड ऑटम सेल जो कि आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगी। क्रिशवल नट्स लेकर के आए हैं आपके लिए और इसके लिए आपको जाना होगा दिस मिड ऑटम ऑफर के लिए कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी नोवेना स्क्वायर केएफसी के ठीक सामने। दिस इज अ फेयर जो चल रहा है 11 सितंबर से और अब ये आज लास्ट डेट है इसका 25 सितंबर। तो बस मेरे बोलते बोलते तो क्या ही आप जाएंगे, बस मुझे लगता है ये लास्ट मोमेंट मंचिंग जो आपकी बची है जल्दी से खत्म कर लो, मौका जो है मौके पे चौका मार लो। अमेजिंग रेंज है इनके पास, फ्राइडे को हेल्दी बना लो। आमंड्स, प्रीमियम कैश्यू, ड्राइड क्रैनबेरीज, नेचुरल केमिकल फ्री हलाल सर्टिफाइड ऑप्शंस, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, एक कियोस्क में इतना सब कुछ कहाँ मिलेगा। तुमको ये दिखला रहे हैं कितनी सारी अमेजिंग चीजें है ना, फेस्टिव ऑप्शंस है, मतलब गिफ्टिंग ऑप्शंस है आपके पास, अपनी अपनी पसंद का ले लो, सबकी पसंद का ले लो ताकि किसी का आप ना खाओ कोई आपका ना खाए। वैसे तो शेयरिंग इज केयरिंग है ना, तो सबका खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाना पड़ेगा बॉस जीजी मार्ट का ये जो है ना ऑटम ऑफर, जल्दी जाइए। दिस इज हैपनिंग इन कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी नोवेना स्क्वायर केएफसी के सामने। और हाँ सुनो सुनो सुनो सुनो, बाय टू गेट वन फ्री है। तो जो भी ला रहे हो दो ले आना, बाय टू गेट वन फ्री, फिर बाय टू तो गेट वन फ्री हो जाएगा, जिसको फ्री है उसको दो मिल जाएंगे है ना। जो भी ला रहे हो दो लाना, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, खत्म हो जाएगा नहीं तो जल्दी जाओ।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime anywhere.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा एक बात बताओ, अनजाना अनजाने में उनको आई लव यू कहने में बहुत वक्त लग गया, पूरी पिक्चर खत्म हो गई, ऐसे बॉलीवुड मूवीज में होता भी है, पूरी मूवी खत्म हो गई और तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि हैला हैरत में आ गए हम कि हमें तो बहुत पहले कहना चाहिए था। तो ठीक है, वहाँ उन्हें हैरत हुई पर आपको भी ये जान के बहुत हैरत होगी। कहने के लिए आई लव यू आपको कितने बर्थडे होते हैं, 3 या फिर 30 नहीं, या फिर एक ऐसा पेपर जो ऑलमोस्ट 8 फीट लंबा हो, मतलब 8 फीट लेंथ का, जिसपे आप आई लव यू लिखो। हैरत में आ गए ना, मुझे पता है। एक ग्रैंडफादर की लव स्टोरी सामने आई है जिन्होंने 1964 में अपनी तू ही तो मेरी स्वीट हार्ट है, हर बात के लिए मेरे पास गाना है, अपनी स्वीट हार्ट को एक बहुत ही प्यारा सा इजहार खास पत्र लिखा, 8 फीट लंबा हैंड रिटन नोट। भाई साहब तभी ये आज तक साथ है, 8 फीट नोट के बोझ तले दो दो दबे। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, कितना प्यार होगा आप ये सोचो यार, 8 फीट लंबा लव लेटर, बाय गॉड आज की डेट में जेंजीज अल्फा बीटा गामास को 8 लेटर लिखने में जोर आ जाए, ये तो ILU का भी कोई शॉर्ट फॉर्म बना देंगे, और इन साहब ने 8 फीट लंबा आई लव यू मतलब प्रेम पत्र लिख दिया। एक तरफ हम आई लव यू को भी 10 बार सोचते हैं कैसे छोटा कर दे, इमोजी से काम चला लेंगे, एक तरफ ये भाई साहब वो जनरेशन थी। इमेजिन करो अगर उस जमाने में व्हाट्सएप होता तो गर्लफ्रेंड क्या रिप्लाई करती, इतना लंबा मैसेज वॉइस नोट ही भेजते थे। थैंक गॉड उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, नहीं तो हमें ये न्यूज कहाँ से मिलती। मजाक नहीं यार, वो सब एक तरफ है, इस कहानी की एक बात बहुत ही प्यारी है, पता है क्या, किसी एक इंसान से आप इतना कुछ कहना चाहते हैं कि छोटे पन्नों में समा ही नहीं पाया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो कितना लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लिखने के बाद उनको रियलाइज होगा कि अरे तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया पत्र, प्रेम पत्र पढ़कर तुम थक तो नहीं जाओगी प्रिय। क्या बात है, आफ्टर सो मेनी डेकेड्स वो लव लेटर संभाल के रखा गया है, 8 फीट लंबा है, रखना ही चाहिए। अनजाना अनजानी का हैरत वाला मूड है ना, देखा जिंदगी में कभी ना कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सरप्राइज कर देता है। हैरत हुई हमसे मिलके, जी हैरत हुई हमें आपसे मिलके, अनएक्सपेक्टेड हैं आप हमारी लाइफ में। फ्राइडे नाइट को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप भी कर लो, किसी अपने को एक अच्छा सा मैसेज भेजो, क्योंकि आपसे तो 8 फीट का पत्र लिखा ना जाएगा, और जरूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भेजो, किसी अपने को। देखते हैं सामने वाला क्या कहता है, लिखना 8 फीट लंबा पत्र तो ना लिख सका प्रिय, पर आपके लिए 8 वर्ड जरूर लिखे हैं हमने। This is me, Mugdha. I'll be back. Stay connected.

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा and तमन्ना भाटिया in The One, Force of the Forest।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जहाँ तक अपनों की बात है, मिलने बिछड़ने की बात है, तो अनजाना अनजाने के अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में एक ये पॉइंट भी था जहाँ पे वो दोनों ऑलमोस्ट बिछड़ जाते हैं, जिंदगियाँ खत्म हो रही होती हैं, बट देन दे गेट बैक टुगेदर। कुछ ऐसा ही हम सबकी लाइफ में होता है। ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब हमको लगता है कि एवरीथिंग इज ओवर, लेकिन देन वी गेट बैक ऑन आवर फीट, क्योंकि हमें खड़े होना है अपनों के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने आप के लिए। कुछ ऐसा ही हाल इस समय नेपाल के लोगों का है, और हम उनके लिए खड़े होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। नेपाल में फ्लड से अफेक्टेड फैमिलीज को इस वक्त बहुत ज्यादा रिलीफ और बहुत सपोर्ट की जरूरत है। कुछ के अपने खो चुके हैं, कुछ अपनों को ढूंढ रहे हैं, कुछ के अपने हैं पर उनके पास कुछ नहीं है, दे आर ऑल लॉस्ट, और हमें उनकी मदद के लिए आगे आना है। तो सिंगापुर में एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है, नेपाल फ्लड रिलीफ फंड। अगर आप लिटिल इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो लिटिल इंडिया आर्केड के एंट्रेंस पर डोनेशन बूथ आप जरूर विजिट करिए। एड्रेस है 48 सरांगून रोड, और 21 सितंबर से ये शुरू हुआ है, 3 अक्टूबर तक ये चलेगा। रोज सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक ये ओपन है, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिंदू वॉलंटियर्स नेटवर्क और सिंगापुर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कम्युनिटी पार्टनर्स हैं लीशा LISHA, नेपाली सोसाइटी और इंडो थाई रेस्टोरेंट, और बेनिफिशियरी हैं सिंगापुर रेड क्रॉस। ज्यादा अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो एक नंबर जरूर नोट करिए, 9166-4101। और मुझे इस इनिशिएटिव की सबसे ज्यादा अच्छी बात पता है क्या लगी? किसी की मदद करने के लिए उसे पर्सनली जानना इज नॉट इम्पोर्टेंट। कभी कभी हमारी एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी अनजाने परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। चाहे कोई अनजाना हो, चाहे कोई अनजानी हो, अगर आप लिटिल इंडिया जा रहे हैं, थोड़ा वक्त, थोड़ा समय निकालिए और अपने नेपालीज भाई बहनों को जरूर हेल्प करिए, और लिटिल इंडिया के इस डोनेशन में अपना साथ जरूर निभाइए, योगदान जरूर दीजिए। स्टे ट्यून्ड,
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनी टाइम एनीवेयर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: तुम मुझे कितना प्यार करते हो, जितना तुम चाहो तुम मेरी हर बात मानोगे। ऑफ कोर्स ओके। तुम कभी मुझसे आर्ग्यू तो नहीं करोगे? नेवर। मैं कभी तुम्हारे आर्ग्यू नहीं करूंगा। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बॉयफ्रेंड नहीं है, चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन है मेरी जान जी। अब आप एआई से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो कैबलरी इश्यूज आएंगे ना यार। हाय सिंगापुर, कहाँ हो रहा है ये? साउथ कोरिया में जी। साउथ कोरिया में एक नया रियलिटी शो आया है, माय एआई पार्टनर स्ट्रेंज लव। वाकई में अनजाना अनजानी में उनको असली प्यार मिलता है, उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। असली प्यार मिल सकता है, उसके बाद भी एआई में प्यार ढूंढ रहे हैं। रियल सेलिब्रिटीज डेटिंग कर रहे हैं एआई पार्टनर्स को। हैं? हाँ। और ये पार्टनर्स कोई इंसान की तरह सामने नहीं आते आपके टेबल की स्क्रीन पर, उधर बैठे होते हैं। ओके। अब इनके अपीयरेंस, वॉइस पार्टिसिपेंट की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर दी जाती है, कर दी गई है। इनफैक्ट एक कंटेस्टेंट जो है उसने तो अपने एआई पार्टनर के साथ टैबलेट जो है उसको पकड़कर पब्लिक में डांस भी किया। व्हाट, सीरियसली? लोग देख रहे हैं। ओके। हमारे वक्त में कोई ऐसा करता तो उसको मम्मी की चप्पल पड़ती हो, कहते पागल हो गया क्या, ये कहते और क्या। खैर, सी अनजाना अनजानी में रणबीर और प्रियंका की मुलाकात अनएक्सपेक्टेड थी, पच गई बात। यहाँ पार्टनर मिलने से पहले ही प्रेफरेंस सेट हो जा रही है। टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक, सारे चेक बॉक्स कर दिए गए हैं, कुछ नहीं है तो कस्टमाइज कर दिया गया, फिर क्या करना बाकी है? मेरा एक सवाल है, एआई बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाए तो ब्रेकअप करोगे या सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे? और इसी हैरत के साथ फिलहाल फ्राइडे के शो में मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा हैरत अंगेज करना मैं नहीं झेल सकती। बहुत सारी बातें हमने कर ली और जाते जाते भी कितनी अमेजिंग बात के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। आप हैरत में पड़े रहिए और हैरत भरा ये गाना एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलूंगी अब अगले शो में, दैट्स गोना हैपन ऑन मंडे। और फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपने फ्राइडे वाइब को अपने अंदर जिंदा रखेगा। मैं मुग्धा यहाँ से जा रही हूँ, पर 24/7 लाइव मस्ती हमारा जो है वो तो यहीं पर है, तो स्टे ट्यून्ड रहिए। बाय, टेक केयर, सी या।

0: बताओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GGMart, your personal grocer.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

झगड़ा हुकूक का खुला तू ओ तेरे सिर च जू ओहो एनीवेज हजरात अर्ज किया।

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
1: We are controlling transmission.

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट.
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: She likes to drop it low, man.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हाँ यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर
1: टाइट वेरी टाइट।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. जोश में रहो।
2: रात अकेली है
0: तो क्या हम तो

साथ अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
1: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
0: रात अकेली है
1: तो क्या, हम तो आप

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, खुद से जो

Thursday, Jay.

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

0: गौरव है।
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी।

0: जाग जा।
1: चल फोड़ भाग जा। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: से पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही करे हुए क्या है।
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग।
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: ए, ए, अब उनको हाथ नहीं लगाना।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो। A future man.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: Let's go. You already know.
1: मेरी आशिकी चाहूँ मैं।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a musty partner event.
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।